0: सुबह का माना।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस जिरी नगरपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू समस्त जिरी नगरवासी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन्भएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
0: मित्र बहादुर जिरेल नगर प्रमुख कृष्णमाया खड्का बुढाथोकी उप प्रमुख एवं राजकुमारी खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिरी नगरपालिका परिवार दोलाखा।

0: 师傅干嘛呢？
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मिनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: नेपालीहरुको महान चाड़ विजयादशमी को पावन अवसर में हमारा समस्त श्रोता विज्ञापनदाता सहयोगी शुभेच्छुक दोलखा आसपास का जिलावासी तथा देश विदेश में रहन्भएका समस्त नेपाली बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। माता दुर्गा भवानीले सबैको कल्याण गरून् यही शुभकामना।
1: हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज परिवार चरीकोट चरिघ्याङ दोलखा
2: समस्त नेपाली बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। माता

विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोनोखारो रामेछाप जिल्लावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। चिन्तिक जल विद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गांव

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षित बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिंचो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबरे दोलखा।

0: 做干嘛呢？
1: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा

0: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक जुगू निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भाई समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेजकिरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नम्बर एक परिवार जुगु दोला।

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजया दशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतेश्वर गांवपालिका र दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आँगनमा खुशियाली छाओस्, यही शुभकामना।
0: राजकुमार श्रेष्ठ, बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 8, सिपी गाउँ, दोलखा।

नया नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज़।

0: सुबह कहाँ माना।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस जिरी नगरपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू समस्त जिरी नगरवासी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनुभएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

मित्र बहादुर जिरेल नगर प्रमुख, कृष्णमाया खड्का बुढाथोकी उप प्रमुख एवं राजकुमारी खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिरी नगरपालिका परिवार दोलाखा।

0: हार्दिक शुभकामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचोक गांवपालिका निवासी बुबामा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू राजनीति कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त तुलोखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, कुल बहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिंचोक गाउँपालिका परिवार दोलाखा।
1: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोलखा
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: 师傅干嘛呢？
1: विजयादशमी दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षित बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करदछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबरे दोलखा।

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोलख।

0: 32 ईमेल श्री सरस्वती इंग्लिश @gmail.com श्री सरस्वती इंग्लिश स्कूल सिंगाटी दोलखा
1: कपसिंदे उन्हें जामा रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज
0: हार्दिक शुभ कामना विजय दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांवपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीति कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना करद अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष कुलबहादुर बुढ़ाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिंचो गांव पालिका परिवार दोलखा

हार्दिक शुभकामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचोक गांवपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, कुलबहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिचो गांवपालिका परिवार दोलाखा।

हार्दिक शुभकामना। विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांवपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरू राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। अर्जुन प्रसाद शिवकोटी अध्यक्ष, कुल बहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष एवं कालिंचो गांव पालिका परिवार दोलाखा।

0: आवाज विहीनहरुको आवाज जन आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोनोखारो रामेश्वर जिलावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भाई समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ। खिन्ती जल विद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गांव

0: हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।
1: जनोपकार बचतकालीन सहकारी संस्था लिमिटेडको 27 साधन सभा सम्बन्धी सूचना।
2: यस जनउपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

उद्धव थापा प्रिन्सिपल एवं अल्पाइन पब्लिक स्कूल परिवार सरीको दोलखा।

विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोलोखारो रामेछाप जिल्लावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहन् भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं। खिमपीठ जल विद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गांव

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कारिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा

0: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक जुगू निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोला।

0: सुबह कहाँ माना।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस जिरी नगरपालिका निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू समस्त जिरी नगरवासी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
0: मेत्र बहादुर जिरेल नगर प्रमुख कृष्णमाया खड्का बुढाथोकी उप प्रमुख एवं राजकुमारी खत्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिरी नगरपालिका परिवार दोलाखा।